आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: गुरु साहिब ने कहा, तुहाडे उपर बेअंत कृपा है, एक खिण लई भी डरियो ना, ते तुसी सीधा गुरु नानक की झोली विच जा वसोगे। ध्यान रखियो, कदे भी पिठ नहीं दिखाउणी। जिवें मीह दा पाणी तेजी नाल किसे ताल च डिगदा है, तिवें खालसा बेखौफ मैदान विच उतरिया ते अकाल पुरख विच समा गया। उन्हां दीआं आत्मा स्वर्गां विच इदां चलिया गईआं जिवें एक चिड़ी आकाश विच। मेरा हिरदा यह खूबसूरती देख गलबा गया। मैं यही अरदास करती रही कि मैं भी उन्हां वांग ही हो जावां। मेरी सिर्फ एक इच्छा सी, उन्हां नाल किले विच होना। मैं अकाल पुरख नाल वादा किया सी कि मैं भी इन्हां वांग निरपै होवांगी। हे मेरे पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं केवल एक पासे बैठ के ये सब नहीं देख सकती, कृपा करो मैनू भी अपने पुता वांग शहीदी की दात बख्शो जी। मैं अपने अंदर एक कोमल जिही आवाज़ सुनी, मैनू तुहाडे उत्ते माण है मेरी प्यारी धीए, तैयार रहो तुसी मैनू छेती ही मिलोगे। मैं जानती सी वो आवाज़ किसती सी। मैनू इउं महसूस होया जिवें मैं पूरी दुनिया की राणी होवां। गुरु पिता जी ते कुछ सिख जो रह गए सन दूजी थां कूच कर गए, दुश्मन उन्हां नू कदे भी फड़ ना सके। अंत विच बेअंत खालसे जंग दे मैदान विच लड़दे हुए शहीदी मंडला विच पहुँच गए। मैनू उदों ही पता लगा कि मैं हुण की कर सकती सी। मैं उन्हां शहीदां दी देह नू सत्कार सहित अगन भेट सकती सी। कोर हनेरा सी ते बहुत ठंड भी सी, पर तां वी मैं लक्कड़ कट्ठी करके लियांदी। इह बहुत औखा काम सी, मगर गुरबाणी ने मैनू ताकत बख्शी। एक एक करके मैं अपने भरावां दी देह चुक के लकड़ां उत्ते रखती गई।
1: वाह, ओ तां बहुत भारी होणगे, तुसीं किन्ने ताकतवर हो। पर मैं कुछ पुछना चाहुंदी हां, जेकर तुसीं चिखां नूं अग लाओ ते पांबण नहीं मच जाएगा, की ये देख के दुश्मन वापस आके तुहानूं फड़ नहीं लेगा?
0: हां जी, मैं जानती सी कि वह दोबारा मैनू मारन लई वापस जरूर आउणगे, पर मैं निरभय रहण दा वादा कीता सी। अते ओ वादा निभाउण दे लई मैं यही कर सकती सी कि अपने भरावां दी सेवा करके उन्हां नू उही मान दे सकां जिहो जिहे बहादुर जोधे ओ सन। दरअसल जिंद कौर जी, असीं अपने दिल दे अंदर सब जानदे हाँ कि सही की है, भावें ओह दुनिया नू नहीं दिसदा। साडी आत्मा उहनू पहचानदी है। एक डरपोक दी जिंदगी दा कोई मुल नहीं है, पर जीवन इत्थों तक कि मौत भी, जो कि हिम्मत नाल प्राप्त हुई होवे, बहुमुल्ली है।
1: ए केवल जीवन जीन दी गल नहीं, पर उस जीवन विच तुसी किन्नी हिम्मत ल्यांदे हो, एही मंतव है।
0: बिल्कुल सत, मैं ए नहीं फिक्र कीती कि मैं जिउंदी हाँ जां मर गई। मैं जानदी सी कि मैं सही हाँ। मैं चिखां नू जलाया अते सत्कार सहित पाणी दा पाठ कीता।
2: जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करतार, निरभउ निरवैर काल मूरत, अजूनी सैभउ गुर प्रसाद।
0: मुगलां नू भावें ए ना दिसदा होवे कि किन्नियां सोहणियां रूहां आज़ाद हो रहीआं सन, उन्हां नू ए जरूर दिसिया होवेगा कि अग किन्नी भख रही है।
3: ओह तेरी, तैनू ओह धुआं दिख रहा है?
4: हाँ, ते ओह चमकौर दी तरफ तो आ रहा है।
3: जेड़ा कोई सिखां नू मान देण दी हिम्मत करेगा, साडे हथों मारिया जाएगा।
4: वापस मुड़ो, असी वापस जावांगे ते ए जो भी है ओनू मार मुकावांगे।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रा नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुके हो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौन हो।
3: मैनू नहीं लगता कि मैं दोबारा कजरी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समां है योध्यां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीड़ी वार है?
5: हा हा हा, साडे कोल बहुत सारीआं वारां ने।
1: मैनू लगता है इस समय ये वार साडे गाउण दे लई बिल्कुल ठीक है।